0: नुजोबाव दायाबोनो खारै सालब्रुम ब्रुम जों गोदै मानै जाव आबरग्न आबरगनि बागै डायबेटिस रग ताबुकनि ओंटं जाराव गोबां गखे ओंमारग नुजाग दङ फियाबा आबुनो कन्ट्रल तनि थानि ब बेलायखिनो जुबाव दायसिनि हाई ब्लाड प्रेसार आबुनो बहायनो कन्ट्रल तनिओ बखानि वाना मारग नब एबा बखानि चाप रग नब हलिरिब दाय स्ट्रोक ओंमारग्न कासु दाय आबुनो कारिब सों ताबुकन ताबुकनि अमल सों जतन यं एबा खेबा उमर थांगिया उइ तंनानि बेलायखिनो हामजाब ओंखाय हिमानि बिसिंतै सोंसिनि उमर रग्न बांमानि न किसा खाइख्लाय तनि मानो आबुनो कारिब सिनि साकनि सिरनि जे थै थांलाय सुख्लाय थानि व जबाव दाय केन्सार हाय ओंमानि आमहाय बेमार रग्न कासु दाय सिनि सागो एन्टि अक्सिजेन नि सामुं न गोबांखे बांग्रिव दाय हजम सिनि जे माइ चामानि चामुं नमुं जे चामानि आबुनो हजमनि फान रथानि बेलायखेनो जबाव दाय सोंन मैद तनि थानि जबाव अबाहेखेनो सिनि साकनि जुदा जुदा बेमार रग्न कासुतानि बेलायखेनो जबाव हायनि बागैनो सों साकबाय थांनि बागै सों सालो फुंगयाखे बा सारिगो सों सालब्रुम ब्रुम 30 मिनिट सों जराकारि उइ हिमनानि नांगौ गासुक जरा सों खाना लायखा साखामो हिमानि बिसिं तिसिनि सागो तामो तामो जबा जमा नाबोनो तैनै कक किसा
1: फायदि तबक सों किसा नाय नायलायानो मुइरिमि एबा धेरसकाय मनरगै ककलाम मुइरिमि एबा देरसकायना बागै पैला हा एबा बारि काहामखै मा सानामनाय हानो काहामखै मा तांख्रुबनाय आबोनि यागुल बोचलै गायफुरु हंखै किसा हाकचाल हाकचालखै मा गायनाय बोचलै गायमानि यागुल किसा तैरनानै नांनाय हाथे बारसानि यागुल बोचलै पेखगै किसा बुफां नुगजागै फायानो जों हा सानामफुरु हाव एबा हा सानामफुरु एबा हा चुवाइफुरु जों हानि लगि मिसकि रग सापलैनाय बारि न सानामखाय देब गाहाम देरस' बोसा याफा खक्सा तरि फाइखा हांखाय जों देरस'नि याफांग हा किसा याख्रबै रोनानै नांनाय आबोनि यागुल नखा नैथि एबा नैथिबा गेबें गेबेंगै सों दै लुनानै नांनाय दै जों अहा याख्रुब्रमाब आबहाखेन खालायदोनानै नांनाय आबोनि यागुल जों देरस' बुबार फाइखाहांखै जों आबुरु देबनायखेनो खाइना नांनाय जरा जर सोंबन दै रोनानै नांनाय दै चामुरबो गेसा रोनानै नांनाय जों सायमान अमयरिमि एबा देरस मैखोथों सिनि साकनि गोबांमा बेमारावबो कासु आबंखा डायबेटिस बेमार रगनोबो कासुब जों सिनि सामानि यागुल जों गाहामखै सिनि अग्रगनि सिनि फाथाराव गाहामखै थांगिया हांखा हांखाय जों बेलायखे बेजवा गलायो आबो रगनोबो ब हामरुओ एनिमिया बेमार रगनोबो कासु सिनि साखिलिक मानि नब ब मथाग्रथानि जबा चरु तै सिनि हाइ ब्लाड कलेस्ट्रल रगनोबो कासु तै सिनि इम्युन सिस्टेम रगनोबो गाहाम खालायो तै मकल नुक्थानि तै हार्ट रगनोबो ब गाहाम खायतानि जबा चरु आसक जरा सों नाय नायलायखा मुइरिमि एबा देरसकाय मन रगै ककलाम ताबो नाय नायलायानो ककथुम रग तामतं तै सेबगो बरगता लांमानि तामो तामो कक रग दं किसा
0: आव आनि याफाव दङ त्रिपुरानि डिटिएडिसिनि ब्लेस काउन्सिल चंबारि न गाहाम ग्रोंखे पायरिना बागै बुट नाहारमानि थायनि 200 मिटार आमचायो गुमति हांकरनि एडिसि खबजाक आमचायनि आजे 200 मिटार साख्लाय बुट नाहारमानि 200 मिटारनि बिसिंग थांलाय सुथानि वो किसामाना बक्सिन मुं बक्सिन जाखा अब बस्कां अतालनि 26 सेप्टेम्बर एबा 26 तारिखनि सिमि अतालनि 29 सेप्टेम्बर एबा 29 तारिख जरा तंगानो 26 तारिखनि सारिखनि 4 तानि सिमि 29 एबा

0: नैचिथाम निशिमि बाचिनि बिसिंग तै खाजाक बसंरंनि बागै हिंखे रायदन रक्षाइन उमर फलग्र जानहनि साजाखा कयलाय रनानि पाइथाक साल अ सेप्टेम्बर तालनि साल नैचिबा नि बिसिंग रनानि नांनाय अनलाइन तै बरकन बरंनि आमजोकमु नि साल तै थायरक बरंन कलेटनि बिसिंग तिन साख्लाय रजागोन हनिबो साजाखा
1: आओ हिंगे आसुक जरा तो संखना लाइका सेबुगो बरक तलांग मनी कोग्रक हाके ताबुक संग तिनिनी नबरती बारनी सकांग बारिया कोक तुमारो किसा खनाई नेलेन तिनिनी सकांग बारिया कोक तुमावो साखलाय जाखा नखा चुमुई किसा कबल जाक तंगानो ताई कासे गुसु थायो फेरांगो गई वाते वाइफ अनु मानो हनेबो हजाक तंगना बागै साखलाय जाखा तिनिनी तुंग मारि तंगानो 33 डिग्री सेल्सियस तै खामाव 26 डिग्री सेल्सियस तै नबर तुई हकुनि सिबुक मारि तंगानो साखाव राव रा पार्सेंट तै खामाव बाजि 4% गै तिनि फुं दाम बा तामै सति 33 जरा वा तै वा मानि मारि नुक जाखा 1.0

के फायदे जो जराव दंगसार जमुन खाना लाइए जिन दिन खानी जमुन पानु जो चेंगलाइन दिवनी दाम नहीं दामी थामची जरा नरकनी गजा रंग दौनाई नरक लगी दंग ट्यून खेद दी सारा जब मेगा हार सै फेमु जेदर गौ जराव बेलाइन खाना तब रजाबों नरक जतनी बगे गौ रजाबों खाना लाइन जो चीन दिन खानी रजाबों पानु चेंगलाइन हाबुनी रजाबों निगुलो हंगा ककदुक गया सकना नरक जतनो तेयर दंग ककदुक खाने बगे चीन ककदुक नम्बर 0388123262 53 और ककदुक नम्बर ककदुक खाई सहर दी बो रजाबों खाना नाई गौ जराव और रजाबों नरक जतनी बगे।

पिक्चराव जों दाबो खोनालायनै दाखौ गनुस खोनानायनि गहेनमानि रोजाबुं दाखौ गनुस खोनादिनि खोनाथकजाकमानि रोजाबुं दे जथ' खोनाय दंनाय दाखौ बुखुं मारे खिथिं संनरबो खोनादि अ खोनादाव रोजाबुं

0: अरे इसी नो तुम्हारे कमर है का काबी तवला हां ता का खुरे दी हमरे रे हमरिया ईश्वर का है सैमान सुनाई ता का खुरे दी श्री ता का खुरे दी
1: हाय के महाराज चिंता मुखे तंग नाही ताई प्रजारक बाई ता मोहन जाग नाही आनो की है साई खना दी महाराज
0: खना दी श्री छोनी सागो इच्छा दोष पूरा ऐसे चलती नहीं बेबाग या करी बात हम लाइना है श्री तेरी संग दस जब तो या करी बात हम लाई बेबाग कमा बैला ताई शुद्ध देहा शिव से तो उसी उसी नहीं करा दे श्री करा दे निरी शाग नहीं जब तो रास्ता नहीं शाग माने खाने तो वही माने अब तो इंजन न फरवरी नवल ठंग रही आणि शांगी शोनी चक्रांत का खाके ताई कठांग तो खाके हाय हाय नाले फिर नहीं श्री नग न फर नगस ठंग रही
1: महाराज अंगता बक्सराया माफ हनी नव की फिली ठंगना नहीं।

को सारा जापॉइंट डॉग में का हर से फेमु जेंट तो जरा स्टूडियो आज उस जगह का हर से बीनो था दाल बिदल पांडा न तो इतुले दाल बिदल पांडा संग दाल बिदल रचा पंखा न लाई तो वहाँ की नरक ने भागे हेलो हाय ते तंग शक न तो रचा पंखा न तो दी लगी तो दी पलाई नक न तो रचा पंखा।

0: चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं।
1: दल बिदल पांडव दल बिदल रचापुंग खनालाई क्या तबुक पाइथक रचापुंग संग कॉकब्रोक रचापुंग खनालाई सिनी दल बिदल पांडव संग पारीलाई ने हिंगे अपने याकलो संग चेंगलाई ने नरोकनी हमजक माची निखातुंग में पांडा अंगे नरोक जोतनो तैयार तोंगडी नरोकनी हमजक माची निखातुंग में पांडव नरोकनी खनातुक जक माली रचापुंग रोकनो खनाना निभागे हिंगांग आर पुइला बखा को नकोंग तु गया सक नाई साइरो नरोकनो सकांग बने नो अंगे नरोक जोतनो तैयार तोंगडी नरोकनी हमजक माची निखातुंग में वो रचापुंग खनाना बागे हिंगे जरा वो बेलाई नखनातुक रचापुंग नरोक जोतनी बागे और रचापुंग खनालाई नो चंग तिनी दाल विदाल पांडा नो जंग पारे लाइसिने खनाई तंगदे लगी तंगदे पांडा पैसा जरा जरा स्टूडियो आ चुक जा कांगार से बीनोता

0: বিশ্লেষণ করা যায় না। সলিল চৌধুরীর মতো একজন সুরকার, যার কাছে সুর ছিল বিজ্ঞান, গণিত, তিনি কিনা বললেন লতা বিশ্লেষণের ঊর্ধ্বে। তাহলে বুঝতে হবে যে লতার কণ্ঠে এমন কিছু একটা ছিল যা সুর তাল লয় পেরিয়েও আরও কিছু, যা সচরাচর শিল্পীদের মধ্যে পাওয়া যায় না। আজকে শিল্পী সুরের আকাশের ধ্রুবতারা লতা মঙ্গেশকর।
1: लता मंगेशकर, लता मंगेशकर एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है, बयान नहीं। ये एक नाम है जिसे सुनते ही मेरे दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। टू मी शी इज इथीरियल, समवन फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, लार्जर देन लाइफ, नो लेस देन अ गॉडेस, अ देवी। दिस वन नेम इवोक्स अ मिलियन फीलिंग्स इनसाइड मी। आई हैव कोल्ड फीट, weak knees, a knot in my stomach, a smile on my lips, and tears in my eyes. In other words, I feel alive when I hear this name, Lata Mangeshkar.

इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। हम ही दुश्मन तो नहीं हैं अपने, गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही।

0: सिक्लारक ने चाहते मूंबा भारत नई सै ब्रैची छिनी बीसीनी सेकान हमसाज राष्ट्र अंगी मानोनी सका राष्ट्र बक्र द्रुपति मुर्मू तीनी बदुदारा महाराजा सायाजिया रंगनक यूनी फिल सिनीसीबा कन्वकेशन पांड ककनारू बक सका राष्ट्र बक्रक तब सका रंग आफ्रू नासाओ जेफ्रु जंग आब हाकतर तई हदानी हामक्रय सामू फनामानो राष्ट्र बक्रक टांगसेप सलैमूंबा गदाल दाल विदाल रंगनी सका फान बक्सिनका तई जुदा जुदा दिखिलो बुरीरकनी मानजकमू बांगमानो बलैख्या सालनी गुजरात बेरायना थांमाव राष्ट्र बक्रक तीनी बदुदराव ब्रह्म कुमारी ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रेट सेन्टर ने चेंगी रिखा आबनी लगी लगी स्पिरिचुअल एवे कैनिंग फर वर्ल्ड रिन्यूएल टांगबांग यूथ फर विकसित भारत आई मूंगनब चेंगी रिखा संगबरी कमीशन छाका बुटाली सनाम फिर मूंग खबई जट ककसामा जतन गसीमू नाहरारी खाइजगो कमीशन छाका सालगीचा सेकान हाकतर गनांगी गबांगमा ककसामा ब्रैचिसुक गताल सकथारमान चल खाइका तई आलैदा एस आई आर नखबई गबांगमा चंगरी ने सनाम फिर मूंग खाइजाखा कमीशन सालगीचा सेकान बिहार केरल तमिलनाडु पुडुचेरी असम तई पंडिचेरव नांगकव गनां चंगरी तई गरंगजाक चंगरी ने सामू भूटान कहमकै न पाइसुग्रिका मंत्री अक्रा प्रफेसर डाक्टर मानिक साहा साका मुख्यमंत्री समी पेसु लोकरकटाई हापंगनी टांगसंगनी बिसिं कायसा नांगकुमा गनां जायजर अंगै सामुं टांगै तंगो आबोबाय साक नायजाकमा ताय जुदा जुदा बायथांनि जोंजाल रकन सकमलिरमा जरानि बिसिं तै चुबाचु मानै तंगो तिनि आगरतलाव मुख्यमंत्री समी पेसु पान्डव बकक साका हास्ते आपंगनि सेबुकटाय पेन्सनर बागै बोसखांनि असामुतायनि रोगै तेरनि एग्रेसियानि रोनानि बांग्रिखा तीन तंग नकत्र ककमा थुमरैन थुम्ब रंग मंत्री प्रणज सिंह राय अकक सकलैक्या ब सका आबोबाय ग्रुप सी ग्रुप डी डी आर डब्ल्यू पार्ट टाइम वर्कार केजुअल वर्कार कन्ट्रेक्चुअल अंगनवाड़ी नखबई कबनी सेबग्रक जतई खरक सारा साय ब्रचिचार साय बारा सा खरक चार्चिबा साय चुकुरा चिदक पेन्सनार तई पेन्सन नुखुनी हामक्राय अंबायना टाकलै तेरनी एग्रेसिया रंग बांगजाखा रंग खक थामराखलाय आबनी बागै हास्ते हापंगनी रंग बायेन खक ब्रैचिसिनि रोजाक जिदक राचाय रंग मंत्री साका ग्रुप सी ग्रुप डी रंग नायखुनि गसमु मानजा फिक्स पे ग्रुप सी ग्रुप डी सेबुक डी आर डब्ल्यू सेबुरकबो टेटनि एडभान्स रंग खक नुइचि सायख्लाय नाहार मानबायेना अंगनवाड़ी सेबुकटाई हेल्पार हुमगाडकनि बागै अ एडभान्स खक बासायताय एनएसएम नि आशा कर्मीरकबो एडभान्स रंग खक नुइसायख्लाय मानबायेना रंग मंत्री तब सका जुदा जुदा टंकथाई दफारकनी हापांनी सेबुरक असामुतायन कारीब ख्रिस्टमास गरियामुटाई बुद्ध पूर्णिमा ईदुल जुहा बांगला बिसिकताल ईदुल फितर गुरु नानकटाई महावीर जन्म जयंती न रगैब अ एडभान्स टेडनी एग्रेसिया माना बागै कयमूंग रैमानो एडिसी भिलेज कमिटी इलेक्शन डिउटी बोर्ड खाना पाइसगोन हासे चमरी कमिशन तांगफां अनुराग सेन साका तीनी तारीख खाना जतई ब्लक थामजिचारो इलेक्शन डिउटी बोर्ड पाइसगोन खना पाइथक सालो ब्लक कायदग इलेक्शन डिउटी बोर्ड नाहार जागोन आकाशवाणी आगुतला केन्द्रनि अककमा खनाय तंबायो आकाशवाणी ककतमा आपडेट माना बागै लग इन खालायदि www.newsonair.com न्यूज अन एयर एप्स फलो खाइदि हदालम्ब फेसबुक टाइ एक्स हेन्डल अल इंडिया रेडियो न्यूज टाइ इन्स्टाग्राम पेज ए आई आर न्यूज एलार्ट नाइदि अफिसियल यूट्यूब चेनेल न्यूज अन ए आई आर आपन कारीब आकाशवाणी आगुतला केन्द्र ने ककतमा आपडेट मानाखाय एक्स हेन्डल आकाशवाणी न्यूज आगुतला फेसबुक ए आर न्यूज आगुतला तई यूट्यूब आकाशवाणी न्यूज आगुतला नायना नांगोन मंत्री बक्रक नरेंद्र मोदी लुकु हामक्रायनी सिमी हाकतर हामक्रायनी सामूबाय गदालै टाबुक जरा जायखे बारजा याचागै लुकु हामक्रायनी सामूग बिसि नैजिबा पुंसुक्का सेबाटाई काहाम नायकल मुंगनि वानसुमूंबाय केन्द्र हापां नुइसाय ब्रैचिसिनि बिसिनि बिसिंग हामजाजाक भारत सनाम तिसाना नाहारै सयातै सामूं टाङै तंगो सेबा संकल्प तांबोतांग जों तिनि सायमान लायनो माइ गभ प्लेटफर्मनि सेबाबाय बुकाल फर लुकालनि यापिरिताय आमचायनि सामजाक मानैन पायि सेब बांग्रिना साखा फान बक्सिन जाखा खोनादि अबनति कायसा ककथुं
1: हा कतरनी हामक्रायनी लामो कतर फान ओंखा चिनी बायथांनी स्नामा चिनी तांग्रोंतै चिनी साकथारमुं चिनी घानागिनी स्नामजाक मानै बायना आमजायनी तांग्रोंतै मानै स्नाम ग्रों रकनो खा बाजारनाव मन्त्री बक्रक नरेन्द्र मोदी बिनि मन की बात पान्दा वाइ गोबां आबरकनोतै खुरसाखा तांगले हिनबा कायसा बायथांनी हा कतरनी स्नामजाक मानै पायमा सिमिया आबबाय गदालजाक दंगो खरकसा बानिया संसार

0: समाचार। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी फैसले पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी।
1: ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला एक सटीक निर्देशित ग्लाइड बॉम्ब है। इसे जैगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है और इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% सामग्री स्वदेशी होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता और बढ़ जाएगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मकुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
3: युवाओं को सशक्त, संस्थागत, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से जो साथी, आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता,

0: नैतिक मूल्य से भी परिपूर्ण।
1: इससे पहले राष्ट्रपति वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देशभर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा सीखने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ी रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। विशेष श्रृंखला में आज अटल इनोवेशन मिशन की।
2: अटल इनोवेशन मिशन, जिसे वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। नीति आयोग के अंतर्गत यह मिशन एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। इसका उद्देश्य स्कूलों में समस्या के समाधान और नवाचार की सोच विकसित करना तथा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और MSME में उद्यमिता का एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार करना है। वर्ष 2016 में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से नई पीढ़ी को विज्ञान और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं।
3: नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए। और इसलिए तो मैं कहता हूँ, लेटेस्ट एम टू इनोवेट। और जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूँ, तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो। इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले।
2: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में स्कूल छात्र सार्थक गुप्ता ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से अटल इनोवेशन मिशन के अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है।
4: पिछले 3 वर्षों से अटल टिंकरिंग लैब्स का हिस्सा बनना मेरे लिए एक बहुत ही खास लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। इस दौरान मैंने सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज नहीं, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना सीखा, नए आइडियाज पर काम करा और अपने हाथों से प्रोटोटाइप्स बनाए।
2: अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता की एक जीवंत संस्कृति विकसित करने और उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्सपर @AIR News हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए न्यूज ऑन

0: aar.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके आज रात तट से टकराने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: आईएमडी ने दक्षिणी जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। उम्मीद है कि डीप डिप्रेशन आज रात और कल सुबह के बीच कलिंगपट्टनम के पास से गुजरेगा और कोरापुट और रायगढ़ समेत दक्षिणी उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भुवनेश्वर में हालात का जायजा लिया और प्रशासन को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं, जबकि प्रभावित इलाकों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कल आंधी चल सकती है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आज दो महिलाओं समेत तीन शीर्ष माओवादी कमांडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार ये तीनों पिछले दो दशकों से अधिक समय से माओवादी आंदोलन में सक्रिय थे और कथित तौर पर लगभग 80 हिंसक घटनाओं से जुड़े हुए थे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांदा एक्सप्रेस कल कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित किया जा चुका है। इनकी बिक्री 35 रुपये प्रति किलो की दर से की जा रही है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से चार विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायलों को बेहतर उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। जबरन गुमशुदगी के मामलों में कथित तौर पर वृद्धि हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ है विशेष शुक्ला।
3: एशियाई खेलों में रोशोबिना देवी वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया।
4: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे, पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद मैं काफी इंजुरी हुई थी, तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होते। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते, तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
3: वहीं जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा में माहेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरूका, मेहराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत एक स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी में इस वर्ष बिहार की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाने वाले 65 स्मृति चिन्ह शामिल किए गए हैं। इनमें मधुबनी और मिथिला चित्रकला, सिक्की और मंजूषा कला, ऐतिहासिक व्यक्तित्व तथा राज्य से जुड़े धार्मिक स्थल शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने की अमेरिकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय

0: दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 87 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उनका कुल स्कोर 198 किलोग्राम रहा। गोल्ड मेडल नॉर्थ कोरिया की री सॉन्ग गुम ने जीता। उन्होंने कुल 215 किलोग्राम वजन उठाया, स्नैच में 94 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 121 किलोग्राम। लेकिन भारत के नजरिए से मीराबाई का ये सिल्वर मेडल बेहद महत्वपूर्ण है। ये उनका एशियन गेम्स में पहला मेडल है। इससे पहले हंगझाऊ एशियन गेम्स 2023 में मीराबाई चौथे स्थान पर रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने पोडियम पर जगह बनाकर एशियन गेम्स में अपने मेडल के सूखे को खत्म कर दिया। मीराबाई के सिल्वर मेडल ने भारतीय वेटलिफ्टिंग के 28 साल के इंतजार को भी खत्म कर दिया। भारत ने आखिरी बार 1998 में बैंकॉक एशियन गेम्स में कर्णम मल्लेश्वरी के जरिए वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता था। मीराबाई चानू के साथ भारत की वेट लिफ्टिंग टीम में भारत की भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव का महिलाओं के 53 किलोग्राम स्नैच राउंड में पहले प्रयास में 84 किलो और दूसरे प्रयास में 87 किलोग्राम का वजन उठाया था, लेकिन तीसरे और आखिरी प्रयास में वो विफल रही। वो 90 किलो का वजन नहीं उठा सकी, यानी कि स्नैच राउंड में 87 किलो उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा। क्लीन एंड जर्क में 108 किलोग्राम का वजन उठाया। उन्होंने कुल 195 किलोग्राम का संयुक्त भार उठाकर अपने अभियान को 8वें स्थान पर समाप्त कर दिया।
1: We also had great news from Wushu and Sakshi Manwal has a report.
2: Roshi Vanadevi secured her place in the women's 60kg final after beating Indonesia's Thania 2-0 in the semi-final. The Indian Wushu star will now compete for the gold medal in tomorrow's final on 23rd September. With this victory, India now stands assured of a medal from the world of Wushu in the ongoing Asian Games 2026.
1: There was history made for India in soft tennis, and here's a report of how the action unfolded. Jaimina won the bronze medal in men's singles at the 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya, becoming the first Indian to win an Asian Games medal in soft tennis. Mina's historic run ended in the semi-finals, where he lost to Japan's Takuya Kurosaka 3-5, 1-4, 1-4, 4-1, 6-4, 1-4. The Indian had earlier beaten the Philippines' Sherwin Nagut in a thrilling 7-game quarterfinal to assure India of its first medal in the sport at the Asian Games. The bronze adds to Mina's steady rise on the international soft tennis circuit. Let's now hear from the Indian athlete who created history in Japan. He's speaking exclusively on Akashvani.
3: बिल्कुल भरोसा था, और सबसे बड़ी चीज कि हम स्टार्टिंग में क्वार्टर फाइनल्स भी हारे, हम मिक्स डबल्स में भी प्री क्वार्टर फाइनल्स हारे, तो उसके बाद यहाँ पर मेडल निकालना ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि जब मेंस इवेंट में जीता जीता मैच हारे थे तो रात रात नींद नहीं आ रही थी और मेंटली बहुत प्रेशराइज भी हो रहे थे, और उसके बाद मिक्स डबल्स इवेंट्स में भी हम जीता हुआ मैच हार गए तो और डिसअपॉइंट हुआ मैं खुद से बहुत। मैं ही जान पा रहा हूँ कि वो कितना मुश्किल था मेरी टीम के लिए, मेरे कोच के लिए, मेरे घर वालों, स्पेशली इंडिया के लिए, इंडिया के सॉफ्ट टेनिस के जो बच्चे थे, जो करोड़ों भारतीयों की उम्मीद है उस पर खड़ा उतरना सर, ये मेरे लिए ओलंपिक मेडल से बराबर है। आकाशवाणी से जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, इट वॉज अ मोटिवेशन, मौका दिया था मेरे सपने और मेरी इच्छा जाहिर करने का दुनिया के सामने, तो सुदेश सर और हमारा सपना था सर आज हम यहाँ पर खड़े हैं, तो वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आकाशवाणी का, टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टाइम नाउ टू हेड टू द शूटिंग रेंज, वेयर शाहिद आजमी हैज अ रिपोर्ट from a mixed day for the Indian contingent.
4: शूटिंग रेंज से भारत के लिए डबल ब्रॉन्ज की खबर सामने आई है। स्कीट टीम इवेंट में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला और पुरुष दोनों टीम स्पर्धाओं में कांस्य पदक अपने नाम किए। सबसे पहले बात महिला स्कीट टीम की, राजा ढिल्लोन, परिणाश धालीवाल और महेश्वरी चौहान की तिकड़ी ने शानदार निशानेबाजी करते हुए 331 अंक हासिल किया और भारत की झोली में कांस्य पदक डाल दिया। और इसके बाद पुरुष स्कीट टीम ने भी कमाल कर दिया। ओलंपियन अनंतजीत सिंह नारुका, महराज अहमद खान और भौतेक सिंह ने कुल मिलाकर 346 अंक हासिल किए और भारत को एक और कांस्य पदक दिलाया। वहीं महिला स्कीट के व्यक्तिगत फाइनल में राजा ढिल्लोन भी चौथे स्थान पर रही, जबकि शूटिंग के एक बड़े मुकाबले में मनु भाकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में 181.1 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रही। यानी शूटिंग रेंज पर भारत ने आज दो कांस्य पदक जरूर जीते, लेकिन राजा ढिल्लोन, अनंतजीत सिंह नरुका और मनु भाकर के व्यक्तिगत मुकाबलों में पदक से चूकने का मलाल भी रहा। निराशा ईशा सिंह और सुरुचि सिंह के प्रदर्शन से भी हुई। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल इवेंट के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। आपको बता दें, ईशा सिंह ने 572 और सुरुचि ने 568 अंक हासिल किए। भारत को शूटिंग से अब तक कुल 7 मेडल मिले हैं, जिनमें 4

0: सिल्वर 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। हालांकि गोल्ड से अभी भी दामन खाली है। आपको ये भी बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने 7 गोल्ड सहित कुल 22 पदक जीते थे।
1: द इंडियन वुमेन्स टीम वॉज इन एक्शन इन हॉकी एंड वेल It was another one-sided encounter. India continued its unrelenting form in the women's hockey competition at the ongoing Asian Games after blanking Thailand 21 in a Pool B fixture. This win joins the list of India's thumping 19-0 and 17-1 victories over Uzbekistan and Indonesia respectively. Forward Deepika starred with 9 goals, while Navneet Kaur scored 4, Rutuja Pistol bagged a hat-trick. India won bronze in Hangzhou 2023 and is in a hunt for their first Asian Games gold since 1982. Time now to check out what happened in the boxing arena.
0: भारत के अंकुश पंघाल आज मुक्केबाजी स्पर्धा में सर्वसम्मति से हुए फैसले में जीत के साथ पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पहली बार एशियाई खेलों में उतरे 21 वर्षीय राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पंघाल ने बहरीन के हमसा ओगेल को प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 5-0 से हराया। पिछले साल विश्व मुक्केबाजी कप में रजत पदक जीतने वाले अंकुश अब पदक पक्का करने से एक कदम दूर हैं। वो क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेहरूज सालिमेव से खेलेंगे।
1: Time now for all the action from the Indian contingent from table tennis. Sakshi Manwal has a report.
2: Harmeet Desai and Yashaswini Ghorpade booked their place in the mixed doubles quarterfinals with a 3-1 victory over Hong Kong's Yu Kuan Tho and Wing Lam. The Indian pair won 11-6, 11-5, 10-12, 11-7 to advance to the last 8. Manu Shah and Dia Chitale stormed into the mixed doubles quarterfinals with a dominant straight games victory over the Maldives' Ahmed Musa and Nazim Eshat. The Indian pair won 11-0, 11-7, 11-6 in just 15 minutes, wrapping up a commanding performance to book their place in the last 8. Harmeet and Yashaswini will face Lin Shidong and Kuai Man of China, while Dia and Manish will face Wang Chun and Du Hoi of Chinese Taipei.
1: The Indian contingent has been giving their best in fencing. Vijeta Chaturvedi has more.
3: फेंसिंग मतलब तलवारबाजी का खेल। इंडिविजुअल सेबर में गीशो निधि कुमार सेन पद्मा ने राउंड ऑफ 32 में शानदार प्रदर्शन करते हुए लाओस के क्वेंटिन सेसाना को 15-8 से हराया और प्री क्वार्टर यानी कि राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला कजाकिस्तान के आर्ट्योम से हुआ। यहां भारतीय फेंसर ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन मुकाबला 11-15 से हार गए। इस परिणाम के साथ कुमार सेन पद्मा का इंडिविजुअल सेबर अभियान समाप्त हो गया। वहीं बात करें महिलाओं की व्यक्तिगत फॉइल स्पर्धा की, तो मीना देवी नौरीम और आशिता स्टेलिन राज जॉयस राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गयी।
1: द इंडियन मेन बैडमिंटन टीम वर ट्राइंग टू क्रिएट हिस्ट्री टुडे। Let's hear what Sakshi Manwal has in her report.
2: India lost 1-3 to China in the men's team semi-final at the Asian Games and settled for the bronze medal. Shi Yu Kui defeated Lakshya Sen in straight games, winning 21-16, 21-18 in the opening match of the men's badminton team semi-final. Later, Sathvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty made a strong start against China's Liang Weiqing and Wang Chang, defeating them in straight games 2-0, 21-11. 22-20. They helped India level the score with China at 1-1. However, Li Shifeng beat Ayush Shetty 21-19, 21-13 in straight games to put China 2-1 ahead of India. Arjun and Hariharan went down 21-16, 17-21, 21-9 in the fourth match of the semi-final tie. The Indian pair showed some resistance in the second game, but the Chinese duo quickly stopped the fight back. India's bronze is only its second ever Asian Games medal in the men's team badminton event.
1: India war in action in the kabaddi competition. Vijeta Chaturvedi has more.
3: भारतीय महिला टीम का मुकाबला ईरान से हुआ और भारतीय टीम ने ये मैच 37-23 के अंतर से अपने नाम कर लिया। मुकाबले के पहले हाफ में भारत 19-15 से आगे था। दूसरे हाफ में भारतीय खिलाड़ियों ने डिफेंडिंग और रेडिंग दोनों में बेहतर तालमेल दिखाया और बढ़त को लगातार मजबूत किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने ग्रुप स्टेज में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब बात करते हैं भारतीय पुरुष कबड्डी टीम की। पुरुष टीम का सामना बांग्लादेश से हुआ और भारत ने यहां भी बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने बांग्लादेश को 48-25 से हराया। पहले हाफ में ही भारत ने 29-9 की मजबूत

0: बढ़त बना ली थी। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप स्टेज में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की। बांग्लादेश पर जीत के बाद भारत ने ग्रुप ए से सेमीफाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। अब भारतीय पुरुष टीम का ग्रुप स्टेज में आखिरी मुकाबला 24 सितंबर को चीनी ताइपे के खिलाफ होगा। वहीं महिला टीम भी 24 सितंबर को जापान से भिड़ेगी। इसके बाद 25 सितंबर को सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मेडल तो पक्का हो गया है।
1: India were trying to make an impact in swimming after a disappointing day yesterday. Sakshi Mandwal has a report.
2: Sajan Prakash missed the swimming men's 100-meter butterfly heats. Meanwhile, his compatriot Benedictine Beniston had finished fourth in the heats with a timing of 53.08 seconds. Anish Sunil and Vedant Madhavan finished fourth and sixth respectively in their men's 200-meter freestyle heats. Anish clocked 1 minute 22.65 seconds ahead of Madhavan's 1 minute 23.67 seconds.
1: There were a lot of hopes from the Indian equestrian contingent. Vijeta Chaturvedi has more.
0: भारतीय घुड़सवारों ने इवेंटिंग के क्रॉस कंट्री चरण में हिस्सा लिया। भारत की ओर से फवाद मिर्जा, अर्जुन सिंह नागरा और आशीष लिमई मैदान में उतरे। इसमें ड्रेसेज, क्रॉस कंट्री और शो जंपिंग जैसे चरण शामिल होते हैं, यानी सिर्फ घोड़े की रफ्तार ही नहीं बल्कि नियंत्रण, सटीकता और बाधाओं को पार करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है। हालांकि भारतीय दल का प्रदर्शन आशा अनुरूप नहीं रहा, इसलिए भारत का क्रॉस कंट्री इवेंट में अभियान आज समाप्त हो गया।
1: A lot of the Indian contingent were in action in the squash competition. Well, Sakshi Mandwal will tell us how they fared.
2: Indian squash players Abhay Singh, Veer Chotrani and Tanvi Khanna all advanced to the round of 16 in their respective singles events on the opening day of squash at the 20th Asian Games, Echi Nagoya 2026. Tanvi Khanna made quick work of South Korea's Kim Dami, cruising to a 3-0 victory in just 16 minutes. The Indian won 11-5, 11-7, 11-5 to book a place in the round of 16. Abhay Singh defeated Thailand's Arkaradit 11-1, 11-0, 11-2, cruising to a 3-0 easy victory for himself. Veer Chotrani defeated Sri Lanka's Shamil Vakil 11-8, 11-3, 11-3, then also securing a place for himself in the round of 16 men's singles in squash.
1: There was a lot at stake for the Indian contingent in rowing. Shahid Azmi tells us how it unfolded.
3: Rowing से भारत के लिए अच्छी खबर है। एशियन गेम्स में भारतीय रोवर्स ने चार स्पर्धाओं के फाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के सिंगल स्कल्स में बलराज पवार ने 6 मिनट 52.84 सेकंड के समय के साथ हीट में तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं पुरुषों के डबल स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी 6 मिनट 15.63 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही और फाइनल ए में पहुंची। लाइटवेट डबल स्कल्स में रोहित और उज्जवल कुमार सिंह ने चौथा स्थान हासिल करते हुए फाइनल में जगह बनाई। क्वाड्रपल स्कल्स में अरविंद सिंह, कुलविंदर सिंह, नवदीप सिंह और जकार खान की टीम ने फाइनल में जगह बनाई। अब भारतीय रोवर्स की नजरें पदक पर हैं। डबल स्कल्स का फाइनल कल सुबह खेला जाएगा।
1: फॉर इंडिया टू स्टे इन कैनो कॉम्पिटिशन दे हैड टू डू वेल टुडे। साक्षी मानवाल टेल्स अस हाउ द इंडियन कंटिंजेंट फेयर्ड।
2: India's men's kayak 4-500 meter team finished third in the heats and qualified for the final A. Arun Singh, Harshvardhan Singh, Shaktawat, Varinder Singh, Nucha Singh Oynam combined for a timing of 1 minute 29.447 seconds in the heats. Megha Pradeep finished fifth in the women's canoe single 200 meters heats with a timing of 49.675 seconds and qualified for the semi-final. Sonia Devi and Parvati Geeta ended 6th in the women's kayak double 500 meter heats with 2 minutes 02.538 seconds. They have qualified for the semi-finals. In the men's kayak double 500 meter heats, Chempa Dale, Satya Prakash, Prasanna Kumar and Prohit Baroy finished on the 5th spot with the timing of 1 minute 41.141 seconds and qualified for the semi-finals. In women's canoe double 500 meter heats, Megha Pradeep and Neha Devi finished on the 5th spot with a timing of 2 minutes 8.713 seconds and qualified for the semi-finals.
1: The Indian contingent is really trying their best to make an impact in Sepak Takraw. Let's hear what Vijeta Chaturvedi has for us in her report.
0: फुर्ती, संतुलन और किक के खेल सेपक टैक्रो में आज भारतीय अभियान में

0: भारत के पुरुष टीम रेगु का मुकाबला फिलीपींस से हुआ। भारत के लिए ये मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण था। भारत ने खेल का आगाज शानदार अंदाज में किया। पहले मुकाबले में भारत ने फिलीपींस को 2-0 से शिकस्त दी। उसके बाद दूसरे मैच में भी भारत ने कड़ा मुकाबला करते हुए स्कोर 2-1 कर दिया, लेकिन तीसरे और निर्णायक रेगु में भारत को झटका लगा। फिलीपींस ने वापसी करते हुए तीसरा रेगु 2-0 से जीत लिया। इस तरह भारत ने मुकाबला तो 2-1 से जीत लिया, लेकिन अपने पहले मुकाबलों में भारत जापान और मलेशिया से हार के चलते सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाया। भारत का टीम रेगु अभियान यहीं समाप्त हो गया, लेकिन सेपक चक्रों के अन्य इवेंट्स में अभी संभावनाएं बाकी हैं।
1: Well, you heard all the special reports. So, where is India in the medal standing? Well, Vijeta Chaturvedi will just tell us.
0: भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीत लिए हैं। क्रिकेट में 1 स्वर्ण पदक, शूटिंग में 4 रजत पदक और 3 कांस्य पदक, वेटलिफ्टिंग में 1 रजत, बैडमिंटन में 1 कांस्य, मिक्स्ड मार्शल आर्ट में 1 ब्रॉन्ज और सॉफ्ट टेनिस में 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। इस तरह आज के मुकाबले खत्म होते होते भारत ने पदक तालिका में 13वां स्थान प्राप्त किया।
1: So 24th September Thursday, what does that have in store for us from Japan? Well, Rosha Beena Devi is going to go for gold in Wushu. She's going to be in action against Zhang Zhao in the women's 60kg Wushu Sando competition. And don't count out our rowing contingent. They are all in action. There's men's single sculls finals, men's double sculls finals. We have women's four finals as well in rowing, as well as lightweight men's double sculls finals and men's quadruple sculls finals, all gold medal events. Our shooting team will be hoping to put the women's contingent 10-meter air pistol disappointment behind them. The men, can they do the needful tomorrow in their individual and team competition? As well, our skeet mixed team competition is also happening and hopefully they get us a medal. We also have athletics action where Asha Lango and Niharika Vashisht are in the women's triple jump final and Seema is in action in the women's 10,000 meters. And finally, the Indian contingent is also in action in the kayak where there are a lot of gold medals at stake. Also in artistic gymnastic, Pranati Nayak is in action in the women's world final. And not only this, but the Indian men's team is in action in Kabaddi. The Indian men's team has a blockbuster hockey match against South Korea. We have our boxers also in action. So it's going to be an action-packed day at the Asian Games. So make sure you stay tuned for all the updates coming to you every hour on the hour from 9:30 a.m. on Akashwani. So for producer Shahnawaz Khan, editor Vandana Bhadwaj and me Abhinav Punchi, we bid you farewell and hoping for another great day for the Indian contingent at the Asian Games.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।